0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: मुआजो
1: जा
0: अच्छा उदी ने बेबी आओ कसफ्री
1: अजा फिग्रेनी अजा फ्री बिचरी
0: अजा बपरा
1: यो
0: बचो है क्राडो हेलो
1: ओ आए ओ आए तुम्हारा क्राडो बने तो मुनी यम कोई
0: And then,